घरमै खडेरी ढुर बनख भुर्र उठ्थु। तब तु मोरलाक पानी बनख बर्सठ। एक घटी के मिलन के बाद वो एक काम के प्रकाश तुहिन बाह पन्ना का उड़ाकर फिर से मन से दूर ले जा। ये प्रकृति के नियम हमा मिलन असंभव कारण तू बद्री मैं धरती। हाँ वो एक दूसर से दूर रख पे करल कब्बुनी और रेना मैया के एक उदाहरण हो दिल के पता। वो एक अटूट मैया के अंश हो दिल के पता।

0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364060।
1: रेडियो लुम्बिनी, रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ट्ज शान्तिको आवाज।

0: मरगा खांची ओबीसी सीमेंट, देश को सीमेंट।
1: रेडियो लुम्बिनी, रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ट्ज़। शांति को आवाज़।